किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। हर दिन ना तो हमें एक प्यारी सी छोटी सी इंस्पिरेशन कहानी सुनेंगे जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले। सो स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से रिलेटेड कुछ कहानियां है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ता सुनसान था और तभी सामने एक झुंड आया खतरनाक बंदरों का। बंदर गुर्रा रहे थे, दांत दिखा रहे थे। स्वामी जी थोड़ा तेज चलने लगे, लेकिन जैसे ही वो तेज चले बंदर और पास आने लगे। अब स्वामी जी को बहुत डर लगने लगा था। तभी एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, रुको मत, पीछे मत हटो, सामना करो इनका। स्वामी विवेकानंद आंखों में आत्मविश्वास लेकर पलटे और सीधे उन बंदरों की तरफ देखने लगे और कमाल हो गया, बंदर पीछे हटने लगे और कुछ देर में वो भाग गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिंदगी में डर से भागोगे तो डर पीछा करेगा, लेकिन एक बार डटकर सामना कर लिया तो डर भी डर जाएगा। हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसे ही बंदर आते हैं, बस उनकी आंखों में देखिएगा आत्मविश्वास के साथ और अपने आप वो डर कर भाग जाएंगे और डटकर सामना करना भी सीखिएगा। तो इस कहानी से सीखिएगा जरूर और बाकी सुनते रहिएगा किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के सवाल है फिल्टर के बिना भी ग्लो कैसे करे। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। तो भाई जवाब एकदम सिंपल है, स्किन को एक्सपेंसिव क्रीम नहीं बेसिक केयर चाहिए। अब वो कैसे, तो ब्यूटी टिप्स में ये सुनिएगा। सबसे पहला रूल है पानी पियो 2-3 लीटर डेली। अगर बॉडी हाइड्रेट है तो स्किन ऑटोमेटिकली अपग्रेड वर्जन पर आ जाएगी। सेकंड है सनस्क्रीन लगाओ। हाँ, लड़के भी लगा सकते हैं, धूप बहुत टैनिंग देती है। और थर्ड है स्लीप लो, यानी कि सो जाना चाहिए। रात 2 बजे तक रील स्क्रॉल करोगे तो डार्क सर्कल आपको फ्रेम में मिल ही जाएंगे। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद नेचुरल ग्लो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जंक फूड कम करो, फ्रूट्स ज्यादा खाओ, पपाया अनार और ऑरेंज ज्यादा यूज करो। स्किन को अंदर से विटामिन चाहिए, सिर्फ बाहर से क्रीम नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस कम लो। पिंपल्स का सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस लेना। लाइफ को थोड़ा चिल मोड पर रखो और अपने आप आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी। याद रखो, ग्लो मेकअप से नहीं रूटीन से आता है। तो ये टिप्स याद रखिएगा। ऐसी अलग अलग टिप्स के लिए ना तो मैं आपको हर दिन कुछ नई बातें बताऊंगा अपने इस शो में। स्टे ट्यून्ड।

0: Good morning, friends. You are listening MGM 90.8 FM. और क्या है ना, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो जिंदगी ऑल इज वेल हो ही जाएगी। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है एमजीएम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम। तो मैम के साथ हम इस वीक ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, नॉर्मल सोचना और ओवर थिंकिंग करना, इसमें फर्क क्या है, ये बताइए हमें।
1: अगर हम नॉर्मल सोच रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम वो बात समझेंगे और हम शायद सोल्यूशन भी, वी विल अराइव एट सम सोल्यूशन, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे उस चीज का। लेकिन हम जब ओवर थिंक कर रहे हैं तो हम बस सोचते रहते हैं, हम किसी सोल्यूशन पे ही नहीं पहुंच पाते। तो ये बार बार सोचना, ये जो लूप बन जाना, बस हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। तो इन शॉर्ट कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें इसी बात से पता लगता है कि जो चीज हम सोच रहे हैं क्या हम वो समझ पा रहे हैं और समाधान ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
0: So exactly, ओवर थिंकिंग कैसी होती है, नॉर्मल सोच ओवर थिंकिंग में क्या फर्क है, यही अभी हमने जाना। So ऐसी और भी टिप्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ओवर थिंकिंग के बारे में हम हर दिन मैम से जानेंगे अपने इस शो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

क्या बात है ए जिंदगी गले लगा ले। तो चलिए फिर मुख्तार जी की फरमाइश पर ये गाना भी हम प्ले करने वाले हैं। बाय द वे दोस्तों, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हम तक आप पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 9359320080। सो फरमाइश पर आप ये गाना प्ले करेंगे, आप भी बताते रहिए।

और यही डायन ना तो अब धीरे धीरे डस रही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान एंड शो शुरू है। मैं ऑल इज वेल और जिंदगी में आपने कुछ भी ऑल इज वेल फिलहाल तो नहीं चल रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है। जा देखो वहां पर बस महंगाई की डायन हमें खा रही है, चूस रही है हमारा खून, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे। और एक बड़े न्यूज चैनल वाली एक पत्रकार है जिन्होंने कहा था कि यार 5 से 7 रुपए बढ़ने से आम आदमी के जेब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी बहुत फर्क पड़ता है, आपको क्या पता, आप तो एसी वाले गाड़ियों में घूमते होगे, बड़े बड़े पैसे कमाते होगे, उस वजह से आपको नहीं फर्क पड़ता होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और इसी के साथ गैस सिलेंडर की क्या ही बात करे, अतः 2 दिवस अगोदर ना 44 रुपये गैस सिलेंडर वाढलेला आहे, जे व्यावसायिक गैस आहेत ना ते म्हणजे आता 3,173 रुपयांपर्यंत याचे रेट पोहोचलेले आहेत। आता लोक विचार करणार की चला इतकं झालंय ना तर आम्ही हॉटेलमध्ये जेवण करणार नाहीये, तर तुमच्याकडे ऑप्शन आहे, तुम्ही घरी जेवण करू शकता, पण जे विद्यार्थी आहेत, जो लोग नोकरी के लिए अपने शहर में है, वो लोग तो हॉटेल में या मेस में खाना खाते है, तो उनके भी जेब के ऊपर आप कैची चलने वाली है। और क्योंकि गैस के रेट बढ़ गए तो मेस वाले होटल वाले भी अपने रेट बढ़ाते है। जिस तरीके से एक आम आदमी मैंगो को चूसता है, उसी तरीके से मैंगो मैन को प्रशासन चूसता है। महंगाई बढ़ रही है, उसी तरीके से अगर सैलरी भी बढ़ गई तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो तो होने वाला है नहीं। खैर,

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Tasech LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: नीट आजकल खूपच नीट नीटक्या पद्धतीने होत नाहीये हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे आणि त्यामुळे नवीन नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM और अब नीट एग्जाम ना तो फिर से होने वाली है 21 जून को. और क्यों होने वाली, हम सभी को पता है कि नीट का पेपर लीक हो गया था. लेकिन भाई आपको पता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो बड़े एक अधिकारी उनका कहना था कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था. हाँ, चंद उसके कुछ क्वेश्चन थे वो ही लीक हुए थे. ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि जब सर्जरी के बाद डॉक्टर कहे कि मरीज मरा कहाँ है, बस उसकी सांसें तो बंद हुई है. जब अमेरिका बोले हमने ईरान पर हमला कहा गया है, बस दो चार बम तो गिरा है. जब सरकार कहे कि रुपया कहा गिरा, कमबख्त डॉलर बढ़ गया, कुछ ऐसी बात हो गई है ये. खैर आप क्या ही बोले, अब इतने बड़े ओहदे पर ये लोग बैठते हैं लेकिन जबान पर लगाम है ही नहीं. और एक सवाल उठ रहा था कि यार नीट एग्जाम विदाउट पेपर लीक के साथ देने के लिए ऑनलाइन तरीके से एग्जाम होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने याला नकार दिलेला आहे. एक याचिका दाखिल करण्यात आलेली होती की नीट एग्जाम येथून पुढे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात यावी, पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता नीट एग्जाम ही ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार आहे. त्यामुळे 21 जूनला जी होणारी एग्जाम आहे ती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार आहे. सो अब देखा जाएगा की एग्जाम कितने पंक्चुअल तरीके से होगी और इस बार पेपर लीक होगा या बस दो चार सवाल ही लीक होगे, ये तो वक्त ही बताएगा. आई होप कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो, वरना स्टूडेंट्स की ना तो साल भर की मेहनत यूं बर्बाद होती है. तो बच्चे कंपनी आप इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, फिलहाल आप बस फोकस कीजिए अपने एग्जाम पर 21 जून के. और स्टे ट्यून्ड.
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhaji.
3: कहीं

Will you dance with me?

महीना शुरू हो चुका है और हवाएं बदल चुकी है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ इन द शो ऑल इज वेल, और हवाओं ने रुख बदला। इसी के साथ बहुत सारे चेंजेस भी अपने पूरे इंडिया में आ चुके हैं कुछ मनी सेक्टरों के अंदर जून महीने में। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे UPI व्यवहारांमध्ये आता नवीन नियम आलेले आहेत, म्हणजे बँकेत नोंद असलेले नावच तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल आणि चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याची शक्यता कमी असणार आहे आणि ऑनलाईन फसवणुकीवर बसणार आळा असा एक नवीन नियम आलेला आहे आणि हे सर्व ना UPI ऍप्सवर लागू होणार आहे। त्यासाठी म्हणजे सिंपल ऑनलाईन सिक्युरिटी या महिन्यापासून थोडी जास्त वाढणार आहे। आणि अजून एक आम आदमी के जे पर कैची चलने वाली एक बात मी आपको बताता हूँ कि LPG सिलेंडर महंगे होने वाले है। 19 किलो और 5 किलो सिलेंडर के रेट बढ़ सकते हैं और जो घरगुती सिलेंडर है जो हम किचन में यूज करते हैं उसके भी रेट बढ़ने वाले हैं एंड होटल रेस्टोरेंट में जो सिलेंडर यूज करते हैं उनके तो रेट बढ़ने ही वाले हैं। और इसी के साथ आप सोच रहे होंगे कि आपको गाड़ी खरीदनी है 4-व्हीलर, तो रुकिएगा, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, उसके भी दाम थोड़े बढ़ने वाले हैं, बताऊंगा कुछ ही देर में। जून महीना बारिश का सुकून तो लेकर आता है लेकिन जेब हल्की भी करवा देता है। स्टे ट्यून्ड।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
1: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
0: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
1: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404449422।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

90.8 FM। और महंगाई की बात करें तो जून महीने में अगर आपके प्लान होंगे कि नहीं आपको कार खरीदनी है, तो कुछ कार के मॉडल के ऊपर 30,000 तक की महंगाई बढ़ने वाली, उसके रेट्स बढ़ने वाले, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी कि कार खरीदने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके प्लान होंगे कि आपको फ्लाइट से कहीं जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो एडवांस में ही टिकट बुक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में टिकट के रेट्स बढ़ सकते हैं, वो भी अच्छे खासे तरीके से। एयर इंडिया एंड इंडिगो ने कुछ फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए हैं बिकॉज फ्यूल के रेट बढ़ रहे हैं इसी वजह से, और वो 3 महीने तक बहुत सारे छोटे और बड़े शहरों के फ्लाइट्स कैंसिल है। सो ऐसे कुछ चेंजेस आने वाले हैं जून महीने में, तो याद रखिएगा और बजट पर ख्याल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. The seats LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
8: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
9: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
8: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
9: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: पहले कहते थे हम शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है, अब कहते हैं शॉपिंग के लिए ऑनलाइन जाना है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MJM 90.8 FM और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है कि ऑनलाइन शॉपिंग और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा एक्टिव है। जी हाँ, सबसे ज्यादा लेडीज शॉपिंग करती है ऑनलाइन तरीके से। ब्लिंकिट हो, मीशो हो या फिर मिंत्रा हो, हर जगह विमेंस यूजर का दबदबा नजर आ रहा है। लड़कियां सोचती है कि यार बस मैं एक ही चीज ऑर्डर करूंगी, ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करना है, बस मैं स्क्रॉल कर रही हूँ मिंत्रा पर क्या नया फैशन आया है, और देखते कब एक पार्सल का 10 पार्सल हो जाते हैं पता ही नहीं चलते। मम्मी पापा चिल्लाते रहते दिन भर, अरे तेरे कितने पार्सल आएंगे, लेकिन दीदी के पार्सल खत्म ही नहीं होते। इस वजह से सबसे ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन महिलाएं करती है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि AI एप्स का यूज बिना तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब अब लोग दोस्तों से कम और AI से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। एक वक्त था जब हम डोरेमोन देखते थे और मन में सवाल आता था कि वो नोबिता डोरेमोन को इतना क्यों बताता है, वो तो एक रोबोट है, रोबोट से कौन इतनी बातें करता है। और आज हम क्या कर रहे हैं, डोरेमोन अपना AI हो चुका है, ChatGPT, और नोबिता हम है। हर एक चीज हम डोरेमोन से पूछते हैं, यानी कि AI से पूछते हैं, रोबोट से पूछते हैं। डिजिटल दुनिया बदल रही है, शॉपिंग का तरीका बदल रहा है, AI से गुफ्तगु बढ़ रही है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा बैंक अकाउंट भी खाली हो रहा है, क्योंकि शॉपिंग जितनी बढ़ेगी उतना पैसा लगेगा और अकाउंट खाली होगा। तो सोच समझ के लिमिट में पैसा खर्च कीजिएगा, क्योंकि पैसा झाड़ पर नहीं आता, ये तो पापा से सुना ही होगा आपने। स्टे ट्यून्ड।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

जब भी हम पेमेंट के लिए यूपीआई यूज करते हैं लगता है हमारे पास लाखों रुपए है, अकाउंट में कम पैसा रहा तो भी फील नहीं होता है कि पैसा कम है, ऐसा खर्च करने का मन ही करता है, होता है ना ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने इंडिया में मई महीने में पिछले महीने में तकरीबन 29 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है यूपीआई के जरिए, मतलब इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है। और हर एक चीज के लिए आजकल हम लोग यूपीआई यूज करते हैं। जब यूपीआई नया नया आया था ना तो बड़े पेमेंट के लिए हम यूपीआई यूज करते थे, ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन आज के वक्त में चाय, कॉफी, किराना, चॉकलेट, बिस्किट, मेडिसिन, ट्रैवलिंग, रिक्शा, टैक्सी, इन सभी के लिए बस यूपीआई यूज होता है। तकरीबन 60% ट्रांजेक्शन ना तो आज के वक्त में यूपीआई से हो रहा है, चाहे फिर 5 रुपए से लेकर 5,000 तक का ट्रांजेक्शन हो वो बस यूपीआई से होता है। आप भी करते हो ना ऐसा? मैं भी करता हूँ भाई। स्टार्टिंग में यूपीआई का यूज ना तो बस हम पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते थे, लेकिन आने वाले वक्त में पिछले 10 साल में इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। जैसे किराना भरना यूपीआई के जरिए, ऑनलाइन शॉपिंग यूपीआई के जरिए, लाइट बिल, घर का बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, डिश रिचार्ज, हर एक रिचार्ज हम अब यूपीआई से करते हैं। और एक रिपोर्ट में यह आया है कि जब नया यूपीआई आया था ना तो तकरीबन इसके ऑल इंडिया में 2 से 3 करोड़ यूजर थे, लेकिन आज की बात करें तो तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसके हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से यूपीआई यूज होता है। और यूपीआई के चक्कर में हमने कैश रखना ही छोड़ दिया है। सो आपकी जेब में कैश है क्या? नहीं होगा ना, होता ही नहीं आज के वक्त में। स्टे ट्यून्ड।

हीरा मंडी इस वेब सीरीज का ये गाना 700 साल पुराना है। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है और गानों के किस्सों में आज हम बात कर रहे हैं इस गाने के बारे में। ये जो गाना लिखा है ना, ये महान शायर अमीर खुसरो जी ने लिखा है। कुछ ऐसी है कि बसंत पंचमी के दिन कुछ लोग फूल लेकर पीले कपड़े पहनकर मंदिर जा रहे थे, तो आमिर खुसरो जी के पूछने पर लोगों ने बताया कि आज के दिन ना तो हम जिसकी इबादत करते हैं, जिसको पूजते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं और पीले कपड़े पहने जाते हैं। आमिर खुसरो जी ने कुछ सोचा और फूलों का गुलदस्ता लेकर सीधे पहुंच गए अपने गुरु

पूरा पिक्चराइजेशन है ना पीले कलर में है, और जितने भी डांसर इसमें डांस कर रहे हैं ना तो सब ने पीले कलर के ही कपड़े पहने हैं। पीला रंग यानी सरसों का रंग इतने खूबसूरती से इस गाने में यूज किया गया है ना, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आज भी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया जी के दरगाह पर हर बसंत पंचमी के दिन पीले कलर की चादर चढ़ाई जाती है। चलिए फिर सुनते हैं यही गाना जिसकी ऐसी कहानी थी। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
1: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
0: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रजाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
1: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधता है, इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची।
3: BTech in Computer Science and Engineering, BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, BTech in Information Technology, BTech in Data Science,
0: PG, MTech in AI and ML, MTech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
3: Admissions open, for more information call on 9404-94299।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधता है, इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी।
3: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
3: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404 94299।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी. किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MCM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404

0: blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Co. Chhatrapati Sambhajinagar.
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM
1: साथ।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

Will you dance with me?

0: से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: जैसे वो सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM

0: खड़ाक,
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
3: ये दूरियां,
1: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे मनीषा। और अगले कुछ मिनटों में हम आप साथ बिताएंगे कुछ खूबसूरत बातें, कुछ खूबसूरत पल और अच्छी सोच और बेहतरीन गाने साथ में सुनेंगे। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा, चाहे आप ऑफिस से लौट रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो। हम आपके इस शाम के सफर को और भी खास बनाने के लिए मौजूद है। दोस्तों, शाम का समय एक ऐसा पल होता है जब हम पूरे दिन की भागदौड़ से आराम करते हैं और खुद को थोड़ी नई एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज की इस खूबसूरत शाम में एक छोटी सी बात याद रखिए, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है और हर शाम हमें अगले दिन के लिए तैयार करती है। तो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए और ऑफ कोर्स इस शानदार शाम का आनंद लीजिए। अब वक्त है बेहतरीन गानों और मनोरंजन का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले आने वाले हैं कुछ आपके फेवरेट गाने और ढेर सारी मजेदार बातें। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में सभी किसी ना किसी काम में व्यस्त है। सुबह से लेकर रात तक जिम्मेदारी, काम, पढ़ाई और कई जरूरी कामों के बीच समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं मुझे आज मनीषा को ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम साथ है तो बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने लिए कुछ पल निकालना भी बहुत जरूरी है। दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हमें अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना आए तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है। दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्लानिंग से करो। सबसे जरूरी कामों को पहले पूरा करने की कोशिश करो और एक समय के बाद काम पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। इसके साथ ही अपने शरीर और मन का भी ख्याल रखे। काम के बीच कुछ मिनट का ब्रेक ले, थोड़ा टहले, पानी पिए और खुद को तरोताजा महसूस करे। याद रखिए, लगातार काम करने से ही नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने से बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए। हर काम को एक सही तरीके से सही दिन में पूरा करना जरूरी होता है। अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़िए और छोटी छोटी उपलब्धियों का भी आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आपका दिन बहुत व्यस्त चल रहा हो तो थोड़ा समय निकाल कर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश करिए। लेकिन यकीन मानिए, इससे न केवल आपका काम बेहतर होगा बल्कि आपका मन भी अधिक शांत और खुश रहेगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर। एंड ऑफ कोर्स आप लोग कहीं मत जाना, बस सुनते रहना MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

शाम कुछ कह रही है, आओ सुनते हैं इसे पूरे दिल से। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये शाम हमें अपने साथ कुछ अलग ही सुकून लेकर आती है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, आसमान अपने रंग बदल रहा है और हवाओं में एक मीठी सी शांति महसूस हो रही है। कभी कभी शाम हमें बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाती है। ये याद दिलाती है कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त या कठिन क्यों ना हो, हर दिन का अंत कई नई उम्मीदों के साथ होता है। ये समय है थोड़ी देर रुकने का, अपने मन की बात सुनने का और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती है। अगर आज आपका दिन शानदार रहा है तो उस खुशी को दिल से सजो लो, और अगर दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो यकीन मानिए ये शाम आपके लिए एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आई है। तो इसे खूबसूरत शाम का स्वागत कीजिए अपने मन पसंदीदा गानों के साथ और ऑफ कोर्स लोगों के साथ। एक प्यारी सी चाय का आनंद लीजिए और संगीत की इस प्यारी सी दुनिया में खो जाइए, क्योंकि सच में दोस्तों शाम कुछ कह रही है। सुनो दिल से, हो सकता है इस प्यारे से मैसेज में आपकी मुस्कान छुपी हो, कोई खूबसूरत याद हो या फिर कल के लिए कोई एनर्जी, कोई इंस्पिरेशन हो। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: कभी कभी दिल में एक सवाल आता है कि क्या यही होता है प्यार भला। This is RJ Manisha and you're listening me on MGM 90.8 FM। जब किसी की एक छोटी सी मुस्कान आपका पूरा दिन बेहतर बना दे, जब किसी की खुशी आपकी खुशी बन जाए और जब बिना किसी वजह के बार बार उसी का ख्याल आए, तो मन यही पूछता है कि क्या यही प्यार है। प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों या फिल्मों की कहानियों का नाम नहीं है। प्यार उन छोटी छोटी बातों में छुपा होता है जहाँ कोई आपकी फिक्र करता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है और आपके चेहरे की मुस्कान की वजह बनता है। कभी किसी का इंतजार अच्छा लगने लगता है, कभी उसकी आवाज सुनकर मन शांत हो जाता है और कभी उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। शायद यही वो एहसास है जिसे हम प्यार कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी होना चाहिए। जब हम खुद की इज्जत करते हैं, अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं और अपने सपनों को महत्व देते हैं, तब हम सच्चे प्यार का मतलब और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो अगर आज आपके दिल में भी कोई खास एहसास है, कोई खास इंसान है, कोई खास शख्स है या कोई प्यारी सी याद है, तो उसे मुस्कुरा कर महसूस कीजिए। और अगर दिल पूछे यही होता है प्यार क्या, तो शायद जवाब यही है कि प्यार को कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि खूबसूरत एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जाता है। तो इसे महसूस कीजिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है.

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर

अक्सर सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अच्छी तरह बोलना क्या है, आइए समझते हैं। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 एफएम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बातचीत में सही समय पर लिया गया पॉज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? जी हाँ, कई बार शब्दों से ज्यादा असर कुछ सेकंड की खामोशी कर जाती है। जब हम बिना रुके लगातार बोलते हैं तो सामने वालों को हमारी बात समझने और सोचने में मौका नहीं मिलता। वही सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा पॉज हमारी बातों को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। पॉज सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी जरूरी है। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ पल रुककर उसकी बात को समझना रिश्तों को बेहतर बनाता है। इससे सामने वालों को लगता है कि उसकी बात को सच में इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कई बार गुस्से या भावनाओं में हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद पछतावा होता है। ऐसे समय में कुछ सेकेंड का पॉज हमें सोचने का मौका देता है और हम बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। दोस्तों, जीवन की तरह बातचीत में भी हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा धैर्य हमारी कम्युनिकेशन को और भी प्रभावशाली बनाता है। तो अगली बार आप जब किसी से बात करें, याद रखिए कि सिर्फ सही शब्द ही नहीं बल्कि सही समय पर लिया गया पॉज भी बहुत मायने रखता है। इसी के साथ आप सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

रिश्ते बनाना आसान है लेकिन उन्हें मजबूत बनाए रखना मुश्किल है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। और इस कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही वो चीज है जो रिश्तों को बांधे रखती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे बात परिवार की हो, दोस्तों की हो, पढ़ाई की हो या फिर करियर की, सही समय पर सही तरीके से अपनी बात कहना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि हम खुलकर बात नहीं करते। हम अपनी भावनाओं को मन में रख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना कहे समझ जाए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अच्छे रिश्तों की नींव साफ और ईमानदार बातचीत पर ही टिकी होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है बल्कि सुनने की कला भी है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। आज की डिजिटल दुनिया में हम लोगों से जुड़े तो हैं लेकिन कई बार बातचीत कम हो गई है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने प्रिय लोगों से थोड़ा समय निकालें, उनसे दिल की बात करें और उनके विचारों को भी महत्व दें। याद रखिए दोस्तों, एक अच्छी बातचीत कई समस्याओं का समाधान बन सकती है, रिश्तों को मजबूत कर सकती है और सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। तो आज एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए, बात कीजिए दिल से कीजिए और ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मन में बहुत अच्छे विचार हो लेकिन जब उन्हें बोलने की बारी आए तो शब्द उलझ जाए? दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजे 90.8 FM। कई बार हम जल्दी बोलने की कोशिश में या ज्यादा सोचने की वजह से बात करते समय फंबल कर लेते हैं। अच्छे कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत तेज बोले या बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को साफ, सरल और कॉन्फिडेंस के साथ रखना। अगर कभी बातचीत के दौरान शब्द अटक जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर अपनी बात आगे बढ़ाइए। लोग आपकी परफेक्ट इंग्लिश या परफेक्ट लैंग्वेज को नहीं बल्कि शब्दों से ज्यादा आपके विचारों और कॉन्फिडेंस को महत्व देते हैं। फंबलिंग अक्सर तब होती है जब हम गलती करने से डरते हैं, लेकिन गलती करना सीखने का हिस्सा है। जितना ज्यादा आप लोग इसे बात करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बोलने की कला बेहतर हो जाएगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, आराम से बोलिए और अपनी बात को दिल से कहिए, क्योंकि इम्पैक्टफुल बातचीत का राज परफेक्शन नहीं बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: देखते देखते हमारी आज की खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि आज का ये साथ, हमारी बातें और आपके मन पसंदीदा गीतों ने आपके शाम को थोड़ा और खास बनाया होगा। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। अगर दिन की थकान थी तो शायद कुछ पल की राहत मिली होगी, और अगर आपका दिन अच्छा रहा था तो उम्मीद है हमारी महफिल ने इससे और भी मुस्कानें जोड़ दी होगी। हर शाम अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाती है और एक नई सुबह की उम्मीद भी। इसीलिए आज की शाम को एक अच्छी सोच और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशियों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को खूबसूरत बनाती है। अब विदा लेने का समय आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ बिताया। हम फिर मिलेंगे एक नई शाम के साथ, नई बातों के साथ और नए गीतों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को और भी बेहतर बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ ही तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371 714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कैंपस एन6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

0: और यही डायन ना तो अब धीरे धीरे डस रही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान एंड शो शुरू है। मैं ऑल इज वेल और जिंदगी में अपने कुछ भी ऑल इज वेल फिलहाल तो नहीं चल रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है। जा देखो वहां पर बस महंगाई की डायन हमें खा रही है, चूस रही है हमारा खून, क्योंकि
1: हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल।
0: पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे। और एक बड़े न्यूज चैनल वाली एक पत्रकार है जिन्होंने कहा था कि यार 5 से 7 रुपए बढ़ने से आम आदमी के जेब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी बहुत फर्क पड़ता है, आपको क्या पता, आप तो एसी वाले गाड़ियों में घूमते होगे, बड़े बड़े पैसे कमाते होगे, उस वजह से आपको नहीं फर्क पड़ता होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और इसी के साथ गैस सिलेंडर की क्या ही बात करे, अतः 2 दिवस अगोदर ना तर 44 रुपये गैस सिलेंडर वाढलेला आहे। जे व्यावसायिक गैस आहेत ना ते म्हणजे आता 3,173 रुपयांपर्यंत याचे रेट पोहोचलेले आहेत। आता लोक विचार करणार की चला इतकं झालंय ना तर आम्ही हॉटेलमध्ये जेवण करणार नाहीये, तर तुमच्याकडे ऑप्शन आहे, तुम्ही घरी जेवण करू शकता। पण जे विद्यार्थी आहेत, जो लोग नोकरी के लिए अपने शहर में है, वो लोग तो हॉटेल में या मेस में खाना खाते है, तो उनके भी जेब के ऊपर आप कैची चलने वाली है। और क्योंकि गैस के रेट बढ़ गए तो मेस वाले होटल वाले भी अपने रेट बढ़ाते है। जिस तरीके से एक आम आदमी मैंगो को चूसता है उसी तरीके से मैंगो मैन को प्रशासन चूसता है। महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से अगर सैलरी भी बढ़ गई तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो तो होने वाला है नहीं। खैर स्टे ट्यून।

आजकाल खूपच नीट नीटक्या पद्धतीने होत नाहीये हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आणि त्यामुळे नवीन नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. यू आर लिस्निंग एमटीएम 90.8 एफएम. और अब नीट एग्जाम ना तो फिर से होने वाली है 21 जून को. और क्यों होने वाली, हम सभी को पता है कि नीट का पेपर लीक हो गया था. लेकिन भाई आपको पता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो बड़े एक अधिकारी उनका कहना था कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था. हाँ, चंद उसके कुछ क्वेश्चन थे वो ही लीक हुए थे. ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि जब सर्जरी के बाद डॉक्टर कहे कि मरीज मरा कहाँ है, बस उसकी सांसें तो बंद हुई है. जब अमेरिका बोले हमने ईरान पर हमला कहाँ किया है, बस दो चार बम तो गिरा है. जब सरकार कहे कि रुपया कहाँ गिरा, कमबख्त डॉलर बढ़ गया, कुछ ऐसी बात हो गई है ये. खैर आप क्या ही बोले, अब इतने बड़े ओहदे पर ये लोग बैठते हैं लेकिन जबान पर लगाम है ही नहीं. और एक सवाल उठ रहा था कि यार नीट एग्जाम विदाउट पेपर लीक के साथ देने के लिए ऑनलाइन तरीके से एग्जाम होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने याला नकार दिलेला आहे. एक याचिका दाखिल करण्यात आलेली होती की नीट एग्जाम येथून पुढे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात यावी, पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता नीट एग्जाम ही ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार आहे. त्यामुळे 21 जूनला जी होणारी एग्जाम आहे ती ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार आहे. सो अब देखा जाएगा की एग्जाम कितने पंक्चुअल तरीके से होगी और इस बार पेपर लीक होगा या बस दो चार सवाल ही लीक होगे, ये तो वक्त ही बताएगा. आई होप कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो, वरना स्टूडेंट्स की ना तो साल भर की मेहनत यूं बर्बाद होती है. तो बच्चे कंपनी आप इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, फिलहाल आप बस फोकस कीजिए अपने एग्जाम पर 21 जून के. और स्टे ट्यून्ड.

पहले कहते थे हम शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है, अब कहते हैं शॉपिंग के लिए ऑनलाइन जाना है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MJM 90.8 FM। और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है कि ऑनलाइन शॉपिंग और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा एक्टिव है। जी हाँ, सबसे ज्यादा लेडीज शॉपिंग करती है ऑनलाइन तरीके से, ब्लिंकिट हो, मीशो हो या फिर मिंत्रा हो, हर जगह वीमेंस यूजर का दबदबा नजर आ रहा है। लड़कियां सोचती है कि यार बस मैं एक ही चीज ऑर्डर करूंगी, ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करना है, बस मैं स्क्रॉल कर रही हूँ मिंत्रा पर क्या नया फैशन आया है, और देखते ही देखते कब एक पार्सल का 10 पार्सल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते। मम्मी पापा चिल्लाते रहते दिन भर, अरे तेरे कितने पार्सल आएंगे, लेकिन दीदी के पार्सल खत्म ही नहीं होते। इस वजह से सबसे ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन महिलाएं करती है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि AI एप्स का यूज बिना तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब अब लोग दोस्तों से कम और AI से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। एक वक्त था जब हम डोरेमोन देखते थे और मन में सवाल आता था कि वो नोबिता डोरेमोन को इतना क्यों बताता है, वो तो एक रोबोट है, रोबोट से कौन इतनी बातें करता है। और आज हम क्या कर रहे हैं, डोरेमोन अपना AI हो चुका है ChatGPT और नोबिता हम है। हर एक चीज हम डोरेमोन से पूछते हैं, यानी कि AI से पूछते हैं, रोबोट से पूछते हैं। डिजिटल दुनिया बदल रही है, शॉपिंग का तरीका बदल रहा है, AI से गुफ्तगु बढ़ रही है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा बैंक अकाउंट भी खाली हो रहा है, क्योंकि शॉपिंग जितनी बढ़ेगी उतना पैसा लगेगा और अकाउंट खाली होगा। तो सोच समझ के लिमिट में पैसा खर्च कीजिएगा, क्योंकि पैसा झाड़ पर नहीं आता, ये तो पापा से सुना ही होगा आपने। स्टे ट्यून्ड।

जब भी हम पेमेंट के लिए यूपीआई यूज करते हैं, लगता है हमारे पास लाखों रुपए है। अकाउंट में कम पैसा रहा तो भी फील नहीं होता है कि पैसा कम है, ऐसा खर्च करने का मन ही करता है, होता है ना ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने इंडिया में पिछले महीने में तकरीबन 29 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है यूपीआई के जरिए, मतलब इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है। और हर एक चीज के लिए आजकल हम लोग यूपीआई यूज करते हैं। जब यूपीआई नया नया आया था ना, तो बड़े पेमेंट के लिए हम यूपीआई यूज करते थे, ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन आज के वक्त में चाय, कॉफी, किराना, चॉकलेट, बिस्किट, मेडिसिन, ट्रैवलिंग, रिक्शा, टैक्सी, इन सभी के लिए बस यूपीआई यूज होता है। तकरीबन 60% ट्रांजेक्शन ना तो आज के वक्त में यूपीआई से हो रहा है, चाहे फिर 5 रुपए से लेकर 5,000 तक का ट्रांजेक्शन हो, वो बस यूपीआई से होता है। आप भी करते हो ना ऐसा? मैं भी करता हूँ भाई। स्टार्टिंग में यूपीआई का यूज ना तो बस हम पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते थे, लेकिन आने वाले वक्त में पिछले 10 साल में इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। जैसे किराना भरना यूपीआई के जरिए, ऑनलाइन शॉपिंग यूपीआई के जरिए, लाइट बिल, घर का बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, डिश रिचार्ज, हर एक रिचार्ज हम अब यूपीआई से करते हैं। और एक रिपोर्ट में यह आया है कि जब नया यूपीआई आया था ना, तो तकरीबन इसके ऑल इंडिया में 2 से 3 करोड़ यूजर थे, लेकिन आज की बात करें तो तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसके हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से यूपीआई यूज होता है। और यूपीआई के चक्कर में हमने कैश रखना ही छोड़ दिया है। सो आपकी जेब में कैश है क्या? नहीं होगा ना, होता ही नहीं आज के वक्त में। स्टे ट्यून।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसका पोता एक गधे के साथ अपने सफर पर निकले थे। पहले दिन पोता गधे पर बैठा था और दादा चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोग बोले, वाह बच्चा मजे कर रहा है और बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। तो उन्होंने जगह बदल ली, अब दादा बैठा और पोता चलने लगा। थोड़ी दूर गए तो और लोग बोले, कितना खुदगर्ज बूढ़ा है ना, छोटा बच्चा पैदल चल रहा है। अब दोनों गधे पर बैठे लोग बोले, बेचारे जानवर पर कितना बोझ डाल दिया ना, इंसानों को तो शर्म नहीं आती है। फिर दोनों उतर गए और गधे को खुद ही चलने दिया। अब लोग हंसने लगे, इतने बेवकूफ है कि गधा होने के बावजूद भी पैदल चल रहे हैं। सच तो ये है, कोई भी काम कर लो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अगर आप लोगों की सोच के हिसाब से चलोगे तो ना खुद खुश रहोगे ना उन्हें खुश रख पाओगे। तो इसलिए जो सही लगे वही करो, क्योंकि याद रखिएगा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको इग्नोर करना और बस आगे बढ़ते जाना। यही थी आज की कहानी का एक किस्सा। बताइएगा जरूर कैसा लगता है। DM on Insta RJ Adnan and stay tuned।
0: किस्सों का कारवा विद RJ Adnan on MGM 90.8 FM।
2: इंजिनिअरिंगची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
3: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स।
2: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग।
3: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
2: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन and control engineering, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं। सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
4: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
5: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
4: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
5: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
0: किंवा कॉल करा 9763679245 9665353515 और 9371714259.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

पॉडकास्ट आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM
3: साथ है तो बात है।
4: ये पर

0: जैसे वह सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।